103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि तदनुसार 13 जून 2026। सवेरे के ठीक 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवा गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकास और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय

0: नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं वंदनवार चिंतन।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, दीपक कभी भूलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम 6:35 से श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। प्रस्तुति चारुबाला खरे की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 से। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर और दिन में 8 बजे, दिन में 2 बजे। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी कहानी अंजलि, लेखक अरगवान अभी और संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान की।

11 बजे आप सुन सकते हैं मैटिनी शो, 12 बजे समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल, सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1 बजे। इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां। त्रिवेणी कार्यक्रम 2 बजे से, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे से। दिन में 3 बजे नाट्य तरंग कार्यक्रम में सुनिएगा नाटक अभिशप्त गांधार, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवाएंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम शाम 6:35 पर। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजतत वाद्य कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। फिल्मकार, लेखिका, नाटककार सई पराजपे द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा प्रोग्राम जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी होगी स्वामिनी का भाग 2। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:15 से। आपके लिए ये कार्यक्रम रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार वसंत देसाई पर। छाया गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको याद दिला दें, रात 10:00। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। जरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 218। प्रसंग है अयोध्या कांड।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया। किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है। उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, कल हमने वायलिन के इतिहास पर चर्चा की थी और भारत में इसके प्रचलन पर विचार किया था। आज हम वायलिन की रचना और उसकी वादन तकनीक पर चर्चा करेंगे। वायलिन की रचना विभिन्न भागों को जोड़कर की जाती है, इस कारण इसके अलग अलग भाग पर चिंतन कर उसमें सुधार का प्रयत्न हर समय किया जाता रहा है। बैक, बेली और रिब्स मिलाकर इसको विशेष आकार दिया जाता है। इसके अंदर निश्चित स्थान पर बेस बार और साउंड पोस्ट लगाए जाते हैं। नेक के ऊपर फिंगर बोर्ड लगाया जाता है। तार लगाने के लिए टेलपीस में लगे एडजस्टर और पेक बॉक्स का उपयोग करते हैं। ब्रिज और नट पर तार रखते हैं। ब्रिज साउंड होल्स के मध्य एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार वायलिन का ढांचा तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके अवयवों के नाम इस प्रकार हैं: परफ्लिंग, लाइन स्ट्रिप, स्क्रोल, चिन रेस्ट आदि। वायलिन के गज अर्थात बो को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया जाता है: स्टिक, हेयर, पॉइंट, फ्रॉग और बो स्क्रू। गज का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, इसका गहनता से अध्ययन श्री टॉर्ट द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित बो के मानक आज भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें चार तार प्रयुक्त होते हैं, किंतु पांच तार युक्त वायलिन का प्रयोग भी प्रचार में आ गया है। प्रोफेसर शिशिर कणाधर चौधरी, प्रोफेसर वीसी रानड़े आदि कलाकार पांच तार युक्त वायलिन ही प्रयोग करते हैं। वायलिन में तरबे लगाने का प्रयोग भी अनेक कलाकारों द्वारा किया गया है। पंडित वीजी जोग पांच तार युक्त तरबदार वायलिन से ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन खड़ा रहकर अथवा कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है, किंतु हम भारतीय सामान्यतः इसे नीचे बैठकर बजाते हैं। इस प्रकार नीचे बैठने से हमें सूत, घसीट, गमक आदि को उत्कृष्ट ढंग से बजाने में सुविधा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारतीय परंपरानुसार गायन वादन बैठकर ही किया जाता है। दाहिने हाथ से विशेष प्रकार से गज पकड़कर गज का संचालन आवश्यकता अनुसार तारों पर किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली से विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि वायलिन वाद्य पर गायकी और तंत्रकारी दोनों ही शैलियों को उत्तम प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वायलिन के तारों को मिलाने की मुख्य चार पद्धतियां प्रचलित है। प्रथम विधि जी डी ए ई अर्थात परे ध ग, इसे हम मसा परे भी कह सकते हैं, अर्थात इसके तार मंद्र मध्यम, मंद्र षड्ज, मध्य पंचम और तार सप्तक के ऋषभ स्वरों में मिलाकर बजाए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन इसी प्रकार मिलाकर वादन करते हैं। हमारे यहाँ चित्रपट संगीत में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तार मिलाने की दूसरी पद्धति है मंद्र षड्ज

मंद्र पंचम, मध्य षड्ज और मध्य पंचम अर्थात सापो सापो। कर्नाटक संगीत के कलाकार इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भी कुछ कलाकार इस पद्धति से मिलाकर वादन करते हैं, जैसे डॉक्टर एन राजम और श्री डी के दातार आदि। तो आइए हम इसी पद्धति से बजाया गया डॉक्टर एन राजम का राग यमन सुनते हैं।

वायलिन मिलाने की तीसरी पद्धति है प सा प सा, अर्थात इसके तार मंद्र पंचम, मध्य षड्ज, मध्य पंचम और तार षड्ज के स्वर में मिलाए जाते हैं। इस पद्धति से मिलाकर बजाने वाले प्रमुख कलाकार पंडित वीजी जोग हैं। इसी पद्धति में मंद्र पंचम को मंद्र मध्यम में मिलाकर चौथी विधि बनाई गई है, अर्थात इसके तार म सा प सा में मिलाकर बजाते हैं। स्वर्गीय केशवराव सुरुंगे इसी पद्धति से मिलाकर वायलिन वादन किया करते थे। पसा पसा पद्धति से बजाया गया राग श्याम कल्याण अब हम सुनते हैं। कलाकार है पंडित वी जी जोग।

गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों पर। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मई 2026 में केंद्र में अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस कार्यकाल में भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में कई ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव आए हैं। सरकार के पिछले 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं तथा विश्वास, विकास और जन कल्याण के इन 12 वर्षों का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आकांक्षी भारत का निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर विस्तार रहा है। राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार द्वारा युवाओं, महिलाओं और किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान और तकनीकी सेवाओं की डिजिटल क्रांति का गांवों तक विस्तार हुआ है, जिससे प्रशासन अधिक पारदर्शी और सुलभ बना है। बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, तो इन वर्षों के दौरान हमारा रेडियो भी डिजिटल हो गया है। अब आप हमें अपने परंपरागत रेडियो सेट के अलावा ऐप के माध्यम से, यानी न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इसी क्रम में प्रसार भारती द्वारा एक फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स भी बनाया गया है, जिस पर आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देख सकते हैं।

श्रोताओं, सरकार के पिछले 12 वर्षों के ऐतिहासिक निर्णयों की बात करें तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावीकरण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और नया संसद भवन व सेंट्रल विस्टा का विकास शामिल है।

श्रोताओं, वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेसवे का निर्माण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अवसंरचना और सुरक्षा तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया है। आज भारत ने अपनी सीमाएं पहले की तुलना में बहुत सुरक्षित की हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बराबर आ खड़ा हुआ है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 38,400 करोड़ रुपए का हो गया है, यानी अब भारत जो है आयात नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों को लागू किया गया है। आवास क्रांति की में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों का निर्माण और करोड़ों घरों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और नल से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया गया है। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और बीमा योजनाएं प्रदान की गई हैं। मेडिकल क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार दिया जा रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत की सुरक्षा प्राप्त कर चुके हैं। देश भर में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनमें दवाइयां 90% से ज्यादा सस्ती हैं, जिससे हमारी बीमारियों में दवाइयों पर होने वाला एक बहुत बड़ा खर्च काफी हद तक सीमित हो गया है।

श्रोताओं, सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक विश्व स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगी। कृषि क्षेत्र में एमएसपी पर खरीद की कहानी किसानों की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। 2004 से 2014 के बीच एमएसपी पर लगभग 7000 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। 2014 से 2026 के बीच यह बढ़कर 12,292 लाख मीट्रिक टन हो गई, जिससे किसानों को अधिक आय सुरक्षा मिली है। एमएसपी खरीद का कुल मूल्य 2004 से 14 के मध्य 7.41 लाख करोड़ से करीब 3.5 गुना बढ़कर 2014 से 2026 के दौरान 26.32 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यह पैसा सीधे किसानों के खातों में गया है। पीएम किसान के तहत किसानों को अब तक 4.30 लाख करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। सर्वेक्षण के अनुसार 92% लाभार्थियों ने इस राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद में किया है, जबकि 85% ने कृषि आय बढ़ने की जानकारी दी है।

श्रोताओं, बाजारों तक आसान पहुंच से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आज लगभग 2 करोड़ किसान ई नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिसने बिचौलियों पर निर्भरता को खत्म कर बाजार पहुंच को सुगम बनाया है। 26 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता समझने और बेहतर फसल प्रबंधन में मदद कर चुके हैं। हर दिन 8000 किसान ई मित्र के माध्यम से अपनी कृषि संबंधी जानकारी और सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह तकनीक को किसानों की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप पहल के तहत लाखों हेक्टर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार हुआ है, जिससे पानी का अधिक कुशल उपयोग संभव हुआ है। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव अक्सर नजरों से ओझल हो जाता है। आज किसानों की डिजिटल प्लेटफॉर्म मिट्टी परीक्षण प्रत्यक्ष

लाभ हस्तांतरण और वैज्ञानिक सलाह जैसी सुविधाएं अभूतपूर्व स्तर पर उपलब्ध हैं। भारत में लगभग 3000 जलवायु अनुकूल फसल किस्में विकसित की गई हैं, जो किसानों को बदलते मौसम के अनुरूप खेती करने में मदद दे रही हैं। दुनिया पहले भारत की कृषि शक्ति से पहचानती थी, परंतु अब भारत दूध, मसाले, दालें और श्रीअन्न मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सरकार के 12 वर्ष की योजनाओं की और उनकी उपलब्धियों की। इसमें हम जीएसटी की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। जीएसटी ने देश में वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना को साकार किया है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में जो वस्तुओं की दरें अलग अलग होती थी, उनका भेद यानी प्रदेशवाद खत्म किया है और हम सबको भारतीय होने का एक एहसास जगाया। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्हीं 12 वर्ष के दौरान हुई है। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं पतंगा फिल्म से, शमशाद बेगम चितालकर की आवाज में। गीत की रचना है राजेंद्र कृष्ण की और संगीत है सी रामचंद्रन का।

0: इंसान का तेरा तू।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: से प्राप्त की जा सकती है।
1: फिल्म संगीत में अब आपको गीत सुना रहे हैं योयो हनी सिंह और स्वीटर्स बरार की आवाज में, छलांग फिल्म से।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

searching for your love. कुमार व शबीर अहमद के लिखे गीत को अपनी आवाज दी नक्शाजीज जोनिता गांधी ने। गाने की धुन तैयार की थी मीट ब्रदर्स ने। फिल्म का नाम ड्रीम गर्ल का भी आप ये गीत सुन रहे थे। अब आपको सुनवा रहे हैं अमित मिश्रा और अंतरा मित्रा की आवाज में मुन्ना माइकल फिल्म का गीत।

9826212 BPL. अरे 9800226235 मैच टच। यार

समीर व सूरज के लिखे गीत को अपनी आवाज दी सोनू निगम, अलका याग्निक ने। गाने की धुन तैयार की थी अनु मलिक ने। फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी का भी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक अभिजीत की आवाज में ये दिल फिल्म का गीत। गीत की रचना है समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

ये दिल फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत के इस अंक का सफर अब यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: हजार, सब्जियों के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
4: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है।

0: सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे हैं। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभयम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए

0: अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी

अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आई सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह को सुगम संगीत में। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं बातें फिल्मों की, जिसमें आज आपको सुनवा रहे हैं

उसकी मुस्कान में बसती है सुबह की पहली किरण, उसकी नजरों में छुपा है सागर सा गहरापन। वो फूलों से नाजुक भी है और पहाड़ों से मजबूत भी। हर रूप में वह जीवन का सबसे सुंदर गीत।

नमस्कार श्रोताओं, चलते हैं आज फिल्मी गीतों के उस सफर पर जहां स्त्री की न केवल बाहरी खूबसूरती बल्कि उसकी सौम्यता, उसकी मुस्कान, आत्मविश्वास और संपूर्ण व्यक्तित्व को अलग अलग लुभावने अंदाजों में बाखूबी पेश किया गया।

वो सिर्फ चेहरा नहीं, एक पूरा एहसास है। जहाँ भी हो वहाँ खुद ब खुद उजास है। साल 1985 की सुपरहिट फिल्म सागर का किशोर दा की आवाज और जावेद अख्तर के बोल से सजा ये खूबसूरत तराना

एक बड़ी खासियत रही हमारी बॉलीवुड फिल्मों के गीतों की, जहां नायिकाओं की खूबसूरती का बखान चांद सितारों तक पहुंच जाता है।

किसी ने क्या खूब कहा है, ना उसे गहनों की जरूरत है ना किसी श्रृंगार की, वो खुद में ही एक पूरी कहानी है खूबसूरती की। पंकज उधास और साधना सरगम की प्यारी आवाज से सजा 1994 की फिल्म मोहरा का ये गीत।

ये खूब मिलन रहा प्रकृति के सुंदर फूलों, कलियों और मनमोहक नजारों के साथ नारी की सुंदरता का वर्णन। जी हाँ, फिल्म थी साल 1993 की अनाड़ी और उदित नारायण, आनंद मिलिंद और समीर के मनमोहक बोलों ने सजाया ये सुरीला गीत।

क्या कहना उस हंसी खूबसूरती का कि जहाँ लगे कि रब ने बड़ी फुर्सत में उसे तराशा होगा। यही तो बड़ी बात रही हिंदी सिनेमा जगत की, जहाँ हर भाव को बड़े प्यार से फिल्माया गया। फिल्म पृथ्वी से लिया गया ये बेहतरीन तराना, जिसे अपनी मधुर आवाज दी उदित नारायण और साधना सरगम ने।

वो हंसी चेहरा, चमकती मुस्कान, वो चले तो बाहर आए, थमे तो कायनात रुक जाए। ये और बात है कि हमारी खूबसूरत नायिकाएं भी बड़ी सुगमता से ढलती आई इन बेहतरीन मधुर तनानों में।

इसे हमारे फिल्मी गानों की बेहतरीन अदाकारी ही कहेंगे, जहां प्रकृति के सारे रंगों से सराबोर होकर ये गीत निकला जावेद अख्तर की कलम से, मधुर संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने, और मीठी और कर्णप्रिय आवाज थी कुमार सानू की।

साल 1990 का दशक इस मायने में बड़ा खास रहा, जहां नायिकाओं की खूबसूरती से भरे तरानों की भरमार रही। साल 1994 में आई खुद्दार फिल्म का ये मस्ती भरा गीत, जिसे सुरीली आवाज से सजाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

हमारे फिल्मी संगीतों की जादूगरी तो देखिए, जहां हमारे गायक, संगीतकार और गीतकारों का नायाब और बेजोड़ संगम बना देता है एक मधुर तराना। फिल्म थी साल 1996 में आई बाबा कहते हैं। उदित नारायण, जावेद अख्तर और राजेश रोशन के मधुर संगीत से बना ये गीत करोड़ों दिलों की धड़कन रहा।

खूबसूरती से भरे इन प्यार भरे नगमों का दौर साल दर साल यूं ही जारी रहा, जहां पूरा संसार सिमट जाए हमारी नायिकाओं की अदाओं में मस्ती और जोश से भरपूर। ये तराना था साल 1994 की फिल्म सुहाग का।

महिलाओं की खूबसूरती से सजी हमारे हिंदी गीतों की अनमोल माला के कुछ नया मोती आज आपकी नजर हमने पेश किए हैं। वो सुंदर नगमे जिनकी सिफारिश चांद तारे भी करते नजर आते हैं।

आशा है इन बेहतरीन नगमों की भावपूर्ण गायकी से भरे सुंदर तरानों का ये कार्यक्रम आपके भी दिल को छू गया होगा। जहां आलेख और स्वर के साथ आपकी हम सफर रही, मैं अर्चना जैन। और इसके प्रस्तुतकर्ता रहे शिव कुमार शर्मा।

सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बातें फिल्मों की। फिर होगी मुलाकात प्यार के इन्हीं खूबसूरत एहसासों से भरे उम्दा तरानों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें फिल्मों की एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
1: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने, 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है, 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारां के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। नैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है। वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामो गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमज़ोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खान पान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खान पान कैसा है, उनके डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पालोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: धन्य जवान अपने थी धन्य वो उनकी जवान।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया।

0: बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

0: चले हम।
1: वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

बसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब बसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। बसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में बसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या का राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी बसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में। साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल, यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में

उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था, उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और

से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: जब तक दुकान संभालता फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई

अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

0: का।
1: कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़के पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी।

और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
2: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
0: तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का।
2: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई, दोनों बातें करने लगे।
0: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
1: क्या बताऊं?
0: यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम

बोला, प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना। पता नहीं, उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम, ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है, तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी, ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में

हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के एक कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

0: अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो?
1: घूमने जा रही हूँ।
0: किसके साथ?
1: एक दोस्त के साथ जा रही हूँ।

0: आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो।
1: क्या?
0: मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा?
1: नहीं बुआ, मैं कर लूँगी।
0: अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना?
1: नहीं।
0: देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना।
1: बुआ मैं आ जाऊंगी।
0: पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी,
1: बाल तो बांध लो बेटा।
0: बुआ मुझे खुले बाल पसंद हैं।
1: अच्छा बाबा जैसी मर्जी,
0: आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

0: थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी।
1: क्या बताऊं?
0: कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ।
1: क्यों?
0: अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है।
1: तुम भी ना,
0: कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा।
1: तुम क्यों इतनी टेंशन में हो?
0: प्रेम ने पूछा।
1: टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है।
0: अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था।
1: तुम नहीं समझोगे,
0: पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी।
1: मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी।
0: अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो,
1: नहीं तो खूबसूरत हो तुम।
0: वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा।
1: अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे।
0: ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली।
1: हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो।
0: हाँ मेरी पल्लो।
1: कुछ भी,
0: पल्लवी शर्माकर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था, बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही

0: लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।
1: ओरे माझी

0: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा?
1: मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली।
0: बस ठीक?
1: हाँ भाई ठीक
0: बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
1: हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा।
0: दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे, लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो?

0: ठीक हूँ।
1: परेशान हो क्या?
0: हाँ थोड़ा परेशान हूँ।
1: बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा।
0: नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी।
1: अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर

थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका

0: जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी, लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं। क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना। पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फ़ोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

0: जा।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

प्यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलो चाहे कली से प्यार करूं।

को ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर।

गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और अब तराना फिल्म का गाना। शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: ये सुनिए, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए, तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
1: तो
0: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा, और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी,
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब गया। रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का

0: क्यों, जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात।
0: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है, ये सुबीर सेन की आवाज है,
0: सुबीर सेन
1: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: ये
1: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के ख़जाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
0: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए, इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। हाँ, हाँ। अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ, हो जाता है, हो जाता
3: है। जैसे
2: तो आप तो जानबूझ करके आए,
3: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, गायक बन गया।
2: गायक बन गया,
3: ऐसा होता है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा।
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा।
3: साहित्य में जगह बनाना चाहता था।
2: ठीक ठीक।
3: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था, कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
2: वाह।
3: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
2: ठीक।
3: जिसकी जगह कम होने लगी और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था आखिर, सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
2: जी।
3: तो उस हल्के में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी कलम हमने कान पे रखी है।
2: हाँ।
3: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
2: हाँ, ठीक।
3: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
2: अच्छा।
3: बिमलदा से आप शायद नाम
2: सुना, बिमल राय
3: जी। हाँ।
2: अच्छा।
3: उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे और उनसे मिले, वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
2: कौन सा गाना?
3: बंदनी में मुरगो रंग ले।
2: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।

0: अब छोड़े जी, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा गा चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था।
1: हाँ।
0: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमल दा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला
1: जी।
0: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें
1: जी,
0: कि लगा कि ये कुछ भूखा है
1: जी,
0: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल। मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है
1: जी,
0: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहां दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
1: सही बात, सही बात।
0: तो तुमने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ
1: जी।
0: और बड़ा अच्छा मौका था, तो जाहिर है
1: हो गया, वहां पहुंच गए, हो गया।
0: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
1: जी
0: कि लेखक की जगह अपनी है।
1: हाँ।
0: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं।
1: अच्छा।
0: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में, वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
1: अच्छा, हुआ तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा,
0: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा।
1: सही बात, सही बात।
0: तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
1: ठीक ठीक।
0: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है।
1: हाँ।
0: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
1: हाँ, मतलब फिर आपने निर्देशन तो, भी
0: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बेमल्ला के साथ हमने
1: अच्छा
0: सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ। हाँ। में
1: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
0: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
1: अच्छा, तो देखिए इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
0: जा,
1: तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
0: जी हाँ, दोनों शख्सियतें हैं।
1: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ
0: जी,
1: लेखक और निर्देशक?
0: वैसे छोड़े जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
1: अरे आप ही लोगों से साथ बैठ के
0: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
1: होता है ना।
0: जी हाँ।
1: अच्छा।
0: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझ में
1: जी,
0: वो पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है इसलिए।
1: जी हाँ। अच्छा।
0: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है।
1: हाँ,
0: जो बात आप
1: हाँ,
0: कह रहे हैं
1: हाँ,
0: जो ख्याल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक।
1: अच्छा।
0: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा। तो गुलजार भाई, अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है, जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर?
0: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
1: अच्छा।
0: और रंगारंग है।
1: हाँ।
0: और अंग्रेजी में।
1: अच्छा।
0: फैसिनेटिंग है।
1: हाँ भाई,
0: बहुत फैसिनेटिंग।
1: अच्छा।
0: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए, कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पे कलम बंद कर लिया
1: जी,
0: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूँ और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अकेला नहीं हूँ।
1: अच्छा।
0: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
1: हाँ।
0: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे कर्मचारी टेक्नीशियंस हैं, जितने
1: सभी उसमें शामिल।
0: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिले और एक सम पे धा न पड़े तो वो बात बनती नहीं,
1: बात नहीं बनेगी।
0: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जोड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए, तब बात बनती
1: है। सही बात, सही बात।
0: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
1: सही बात।
0: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है।
1: हाँ।
0: उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती है, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल हाँ। जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना।

0: फाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना,
1: बहुत चर्चा।
0: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
1: इसके विचार दो तरह से हैं।
0: पहली तरह
1: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा।
0: अच्छा,
1: तो जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, वही लेख का ख्याल
0: जी,
1: कि भाई ये है क्या जो वायलेंस है, तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
0: अच्छा अच्छा,
1: और वो प्रोपगेट करते रहे हम।
0: अच्छा,
1: अब वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मधोश कर दो और निकल जाओ।
0: ये चीज,
1: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
0: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
1: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। अब वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
0: जी,
1: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
0: जी
1: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
0: जी,
1: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि नहीं।
0: वाह वाह,
1: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: वाह,
1: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
0: जी,
1: वो बनावटी रहेगा।
0: हाँ ठीक,
1: और ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं, जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो
0: जी,
1: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में
0: जी,
1: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
0: अच्छा,
1: शायद
0: अच्छा,
1: हो कहीं मेरी अच्छा, नजर से नहीं गुजरा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
1: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, आपके हक में मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
0: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्मी मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे, तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों का क्या विचार होते हैं?
1: खास तौर पे ताशकंद में
0: जी
1: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
0: अच्छा,
1: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
0: हाँ,
1: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे एक तो राज कपूर साहब
0: जी,
1: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से
0: यहाँ पे। वाह,
1: और जो नए अदाकार वहाँ गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
0: वाह वाह,
1: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहाँ दिखाई गई, जगह जगह गए हम
0: जी,
1: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
0: अच्छा,
1: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
0: जी,
1: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहाँ बेच सके।
0: अच्छा,
1: या उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
0: अच्छा,
1: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी कारामद है।
0: बिल्कुल कारामद है, और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
1: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
0: हाँ, है ना,
1: और दोनों को जांच लेना चाहिए।
0: हाँ, जांच लीजिए।
1: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
0: जी
1: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
0: ठीक,
1: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
0: जी,
1: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
0: ठीक,
1: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी या एक बार तो ये महसूस होने देंगी कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची।
0: वाह, क्या बात कही।
1: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपके कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
0: ठीक,
1: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ और ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए
0: जी।
1: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है
0: जी।
1: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
0: अच्छा,
1: लेकिन पहुंच कम हुई है।
0: हाँ ठीक है, तो
1: मतलब उतनी नहीं हुई जितनी

0: होनी चाहिए थी और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था
0: जी हाँ,
1: और आप कवि हैं, शायर हैं
0: जी हाँ,
1: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी आपकी जबानी तो क्या हर्ज जाए।
0: छोटे जी हर्ज तो कुछ नहीं जी, अच्छी बात है,
1: अच्छी बात है ना,
0: अगर उन्हें अच्छी लगे।
1: अरे लगेगी साहब, जरूर लगेगी।
0: नज़्म में आपको सुना देता
1: अच्छा।
0: हूँ और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था,
1: अच्छा वो जो शायर था,
0: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए, वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाजें जमा करता था, चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें,
1: वाह,
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था, चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुलजार भाई आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से, और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।
1: अच्छा नमस्कार,
2: इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था, और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार

0: बैठी नहीं शो करी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन

0: निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुनिए यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

में पड़ी। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: सांसों की लड़ी जोड़ दो न टूट जाए।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी।

la la la la la la la la la la la la la la. यू न शर्मा है लादे अपनी गोरी गोरी बाहें, यू न शर्मा।

दुनिया है, जिंदगी में शोभा है। बात जो हम कह न सके।

ना सकते हैं अपने ये गम दुनिया को हम कैसे सुना सकते हैं। सपने सजाने वालों, हंसने हंसाने

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 215 17वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट

का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दाता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

पलकों की छाव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब पाए हैं। गुलजार साहब ने लिखा पलकों की छाव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छाव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियाँ इससे पहले

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में, और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से। एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से है और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह है, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रही हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही है कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खय्याम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है और हालत खराब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है, दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा

तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा, पाउसाला मोटा, जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीले सफर की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही है कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं

बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीलिए ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें हैं और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है, वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते और जब वो चली जाती तो उसे रोकते, बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं जैसे निस्दिन देख रहे हों, बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ, और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो

मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूँ क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में है और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे

बैठना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर का बरस गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है, यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और

अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती है कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया

है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी, क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें दाल बाटी चूरमा और अन्य चीजें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद

थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी, इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है? आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है? फटाफट बताइए।

साथ या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज की बोल, एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसों भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया? और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

0: Batavia in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा

0: में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और

0: चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और

सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मन चाहे गीत। मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मन चाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाही गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

विविध भारती से और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी, खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंदगढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं, समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता, और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज की।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मनचाही गीत
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, दुद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र स्वप्नी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर

0: भी अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। चिकार ये व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
1: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
0: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: देखिए ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। तो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
2: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
2: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी।
3: देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
4: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुलदेव का की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
4: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
4: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तो बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तो चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच

0: भी नहीं सकती थी। इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा, उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
1: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
0: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतानंदकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए, अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र राष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी।
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ, राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया।

0: फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रभंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्यश्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: मैं
1: धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप। विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या।
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं है?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूँ गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता। नहीं
0: महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गंधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य। ओह, असहनी है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। गुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि।

0: जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना।
1: आश्चर्य है महारानी।
0: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्या ये स्वाभाविक नहीं?
1: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
0: क्या,
1: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का?
0: ओ पगली कहेंगी, क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है, वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
0: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
1: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
0: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत हुआ।
2: हाँ,

0: सुना तुमने गांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज सुना, जान का सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
0: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा, क्यों उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता? किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
0: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
1: महाराज ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
0: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
0: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी, यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तनापुर का भविष्य
0: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज ये तो अनर्थ होगा।
0: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था, नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
0: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? दुर्बल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? क्या

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक,
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर क्या है?
1: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। पारानी, पारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी।
0: नहीं दीदी, कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता।

0: महाराज ध्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज,
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा,
2: द्रौपदी नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित है।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में

0: सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
1: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस।
2: लहू भुलक गया, लहू भुलक गया।
1: टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है।

0: लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी।
0: करेक्ट।
1: जिसमें खास तौर से

कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया, अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपनी फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग एक पहचान मुझे इस

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो हाँ। गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही,
0: किस तरह के? क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, हाँ। अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, मेरे माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है,
1: है,
0: लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूं, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूं, मैं जो थॉट है, जो सोच है उसको लेके चलता हूं और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अब वही चीज वापस कर तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक, और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा, फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है, तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था, फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए, वो समझ होता है इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है, अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े, अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए, अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन

0: जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ. ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन. ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है. कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है.
0: That's the word I was searching for. तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो. इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है.

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया।

0: या क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं, लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
1: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
2: जरूर,
1: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
0: बाहों में छ

0: भैया एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती है, ओके, एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो

0: हम पिक्चराइज करते हैं कि ये चार बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से चार काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ चार स्टेप करें या आठ स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना अच्छा दो काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ है, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ चार या पांच या आठ काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है। हाँ। जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है तो लोगों को ही मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता.
1: करेक्ट.
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं. आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है. आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं. अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं. उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है. दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है.
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है.
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं. ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन. तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब. आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब. वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है. वो लोग भाप लेते हैं, तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही.
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है. क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया. एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू. And that's the one thing that I really admire about them.

0: Detective Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाने हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बींग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ डांसर, लेकिन उनकी फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं, और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है. इवन विद रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा मेहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। नमस्कार सखियों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में हम लाते हैं ढेर सारी बातें, जानकारियां और मनभावन गीत संगीत। सखियों, आज के कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी सखी आरती। सखियों, हमारे आसपास के परिवेश में हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में नशे के आदि हैं। भारत में मादक पदार्थों और शराब की लत एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करती है। नशा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ पारिवारिक, सामाजिक संबंधों और आर्थिक स्तर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। नशा समाज के लिए एक नासूर बन गया है। सखियों, आज चर्चा में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान की। सखियों, मादक द्रव्यों के सेवन से पैदा हुई गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। यह नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इस पहल का उद्देश्य भारत को मादक पदार्थों के प्रति जागरूक और इसके दुरुपयोग के विरुद्ध मजबूत बनाना है। सखियों, इस अभियान में उन हितधारकों को लक्षित और शामिल किया गया है जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं और जो इसके प्रति संवेदनशील हैं। नशा मुक्त भारत अभियान यानी NMBA के प्रमुख हितधारक और लाभार्थी युवा, महिलाएं, बच्चे, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज और व्यापक समुदाय हैं। यह अभियान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। NMBA रोकथाम, मूल्यांकन, उपचार, पुनर्वास, देखभाल, जन सूचना प्रसार और सामुदायिक जागरूकता पहलों का समन्वय करता है। शुरुआत में 272 संवेदनशील जिलों को लक्षित करते हुए NMBA का विस्तार पूरे भारत में हो चुका है। सखियों, नशे के दुष्प्रभाव से स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध, युवा कोई भी अछूता नहीं है। नशा मुक्त भारत अभियान में त्रिआयामी रणनीति अपनाई गई है, जिसमें पहली है आपूर्ति नियंत्रण। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो इसकी व्यवस्था करता है। दूसरी है मांग में कमी और जागरूकता लाना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से लोगों तक व्यापक पहुंच और जागरूकता संबंधी गतिविधियों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और तीसरी है उपचार और पुनर्वास। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इसके संबंध में सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सखियों, नशे की लत के कारण अपराधों की दर में वृद्धि, तनावपूर्ण पारस्परिक संबंध, आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। सखियों, इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए NMBA की कार्य योजना में जागरूकता सृजन कार्यक्रम है। जागरूकता के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना है। सखियों, नशा मुक्त भारत अभियान राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जो प्रभावित समुदायों के हित के लिए काम कर रहा है। नशा मुक्ति के लिए उपचार, पुनर्वास, देखभाल जरूरी है। सखियों, इस अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए शिक्षित करना, जागरूकता पैदा करना, मादक द्रव्यों पर निर्भरता वाले व्यक्तियों की पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास, सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना है। सखियों, इसी क्रम में व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज पर मादक द्रव्यों पर निर्भरता के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना तथा मादक द्रव्यों पर निर्भर समूहों

और व्यक्तियों को समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने और उनके प्रति भेदभाव को कम करना है, ताकि उन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। सुखी निष्कर्ष यही है कि भारत में नशा करने वाले लोगों को नशा मुक्त करने के लिए यह राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। नियंत्रण, निरंतर प्रयासों, जागरूकता से यह अभियान इसका प्रभाव प्रबल होता जा रहा है और भारत अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ, सामर्थ्यवान और नशा मुक्त भविष्य के अपने सपने को साकार करने के करीब पहुंच रहा है। सखियों, अपनी बातों को देते हैं कुछ विराम और चलते हैं गीतों के संसार में। आइए सुनते हैं यह मधुर गीत।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सखियों आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों आत्मनिर्भरता, सशक्त होने और सम्मान पाने का पहला सोपान है। सखियों सामाजिक ढांचे में बदलाव हो रहा है, महिलाएं भी धन अर्जन

0: करके परिवार को आर्थिक सहयोग दे रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं यह वार्ता। वार्ता का विषय है महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन। इस वार्ता की वार्ताकार हैं भारती गुप्ता।
1: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जगत जननी मातृशक्ति का भौतिक रूप स्त्री पूरे परिवार समाज की धुरी है, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। आज उसे सशक्त बनने की आवश्यकता है। वर्तमान में स्त्रियां पहले से अधिक सशक्त हुई हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि अभी भी स्त्रियों को समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वो हकदार हैं। शिक्षित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित करती है, लेकिन एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला पूरे समाज की नियति बदलती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को केवल अधिकार देना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। जब महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, सम्मान और अवसर मिलते हैं, तो वे समाज और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाती हैं। जब एक स्त्री अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होती है, तो वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं कहलाती। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं शोषण सहने के लिए मजबूर होती हैं। उनके पास जाने का कोई ठिकाना या आजीविका का साधन नहीं होता। आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है और आत्मनिर्भरता से ही नारी की पहचान होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सबसे जरूरी है। जब महिलाएं कमाने लगती हैं, तो परिवार की आय बढ़ती है, जिससे परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। समाज में आर्थिक संतुलन आता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं शिक्षा, विवाह, करियर आदि के बारे में अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। परिवार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, रहन सहन, घर के छोटे बड़े फैसलों में उनकी सलाह ली जाती है। जब महिलाएं स्वयं कमाती हैं, तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। वे खुद को बोझ नहीं, स्तंभ समझती हैं। स्त्रियों का धनार्जन अगली पीढ़ी को बेहतर भविष्य प्रदान करता है। जब स्त्री स्वयं की आय अर्जित करती है, तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। वह दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखती है। उसका समाज और परिवार में सम्मान बढ़ता है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला परिवार की आमदनी में योगदान देकर आर्थिक उन्नति में मदद कर सकती है। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं घरेलू हिंसा और शोषण के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। वहीं आर्थिक मजबूरी होने के कारण वे गलत व्यवहार सहती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती। अक्सर पुरुष महिलाओं से कहते हैं कि तुम करती क्या हो, तो इसका जवाब एक न्यूज चैनल द्वारा दिया गया उसके सर्वे के अनुसार महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक दैनिक कार्यों की वैल्यू महीने में लगभग 45,000 रुपए से 90,000 रुपए तक हो सकती है। यदि महिलाओं के घरेलू कार्यों का मौद्रिक मूल्यांकन किया जाए, तो वे भारत की जीडीपी में लगभग 7.5% तक का योगदान दे सकती हैं, जिससे जीडीपी में लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर महिलाओं का योगदान लगभग 37% है, जिसमें भारत का योगदान लगभग 17% है। जहां महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक समानता की बात आती है, वहां कार्य क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। पुरुषों का कार्य समय लगभग 8 से 10 घंटे तक हो सकता है, वहीं स्त्रियों का कार्य समय 14 से 17 घंटे तक होता है। स्त्रियां

दोहरी जिम्मेदारियां उठाती हैं, बाहर भी काम करती हैं और घर में भी अपने जिम्मेदारियां निभाती हैं। महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में मदद करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें उद्यमी बनाया जा रहा है। भारत सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासरत है। कुछ सरकारी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कौशल विकास योजना ने रोजगार के अवसर खोले हैं। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण के द्वारा उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तथा महिला आरक्षण विधेयक द्वारा भारतीय संसद में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियों के योग्य बनाता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत करने, आपसी सहयोग और लघु ऋण के माध्यम से छोटे उद्योग करने के लिए प्रेरित करते हैं। हस्तशिल्प, अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि के लिए उपकरण और स्थान उपलब्ध करा उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। कम ब्याज दर द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। अनेक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा सीधे आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आदिवासी व ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन, किराना दुकान और अन्य लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। महिलाएं हस्तशिल्प जैसे बंधेज, ब्लॉक प्रिंटिंग, मीनाकारी और कठपुतली निर्माण में पारंगत कर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाकर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर रही हैं। राजस्थान की रूमा देवी हमारे लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी हस्तकला के द्वारा न केवल आजीविका प्राप्त की बल्कि सम्मान भी प्राप्त किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को हस्तकला का प्रशिक्षण देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार महिलाओं को कौशल विकास, उद्यमिता, कृषि और तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इसी क्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती में कीटनाशक और तरल उर्वरक छिड़काव के लिए आधुनिक ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत चुने गए महिला समूहों को ड्रोन पैकेज के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों का खर्च कम होता है और महिलाओं के लिए अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खुलते हैं। इसी तरह सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना भी चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख तक पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को सिलाई, कृषि, LED बल्ब बनाने जैसे कई कौशल सिखाए जाते हैं और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपयों तक का लोन भी बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता से देश के विकास के साथ साथ सामाजिक ढांचे में भी बदलाव आने की संभावना है। जहां बेटा बेटी में भेदभाव होता आया है, वहां आत्मनिर्भर माता, पत्नी, पुत्री को पुरुष सदस्यों के साथ समान महत्व और सम्मान प्राप्त होता है। इससे लैंगिक असमानता दूर होगी। अन्य कुप्रथाएं जैसे दहेज प्रथा पर भी नियंत्रण होगा। आत्मनिर्भर स्त्री समाज की अन्य स्त्रियों के लिए भी प्रेरणा होगी। उन्हें भी आगे बढ़कर पढ़कर आत्मनिर्भर बनने की चाह होगी। आत्मनिर्भर नारी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने, जीवन स्तर को उठाने में सहयोग करती है। निष्कर्ष यही है कि आत्मनिर्भरता से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। आर्थिक स्वावलंबन स्त्रियों के सम्मान और स्वाभिमान

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आपने सुनी यह वार्ता। इस वार्ता की वार्ताकार थी भारती गुप्ता। सखियों, आज है 13 जून, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। सखियों, एल्बिनिज्म एक दुर्लभ और गैर संक्रामक आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलने वाली जन्मजात विकृति है। लगभग सभी प्रकार के एल्बिनिज्म में जीन के वंशानुक्रम के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक है, भले ही वे स्वयं एल्बिनिज्म से पीड़ित न हो। यह विकृति दुनिया भर में पाई जाती है, चाहे लिंग जाति कोई भी हो। सखियों, एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के बालों, त्वचा और आंखों में मेलानिन वर्णक की सामान्य कमी के कारण वे सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे त्वचा कैंसर और गंभीर दृष्टि हानि हो सकती है। मेलानिन की कमी से, जो एल्बिनिज्म का मुख्य कारण है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। इस वर्ष विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम है मुझे अपनी त्वचा पर गर्व है, मैं त्वचा के सभी रंगों का जश्न मनाती हूँ। 2026 की थीम इस बात पर ध्यान आकर्षित करती है कि रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव किस प्रकार गरिमा, सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 2026 का अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हमें पूर्वाग्रह का सामना करने, पीड़ित व्यक्तियों की आवाज को केंद्र में रखने और समानता, सुरक्षा और समावेश पर आधारित वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। मेलानिन की कमी के कारण त्वचा धूप में सुरक्षित नहीं रह पाती, जिससे त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह बीमारी छूत की बीमारी यानी संक्रामक नहीं है, पर इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सही देखभाल और सुरक्षा के इन चुनौतियों को आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। अधिकांश स्थानों पर एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जाता है, पर इसे रोकने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। यह समझना होगा कि यह आनुवंशिक विकृति है और इससे पीड़ित लोग भी हमारी तरह मानव हैं। सखियों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम और चलते हैं संगीत के संसार में। आइए सुनते हैं यह गीत।

बच्चों आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों आजकल मिलावट का जमाना है, हर चीज में मिलावट है। दूध, मसाले, घी, तेल, कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट के जहर से अछूता नहीं है। सखियों मसालों को मिलावट से बचाने के लिए बेहतर होगा कि उन्हें घर पर तैयार करें। सूखी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गर्म मसाले को घर पर ही कूट पीस कर छान कर तैयार कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्च को घर पर धूप में सुखाकर मिक्सी में पीस लें। ऐसे ही साबुत धनिया को भी एक दिन की धूप में सुखाकर मिक्सी में पीस कर रख सकते हैं। हल्दी की साबुत गांठों को धूप दिखाकर थोड़ा कूट कर छोटे टुकड़े करके घर पर ही मिक्सी में पीस लें और छान लें। सखियों ऐसे ही गर्म मसाले की सामग्री को भी घर पर लाकर कूट पीस कर तैयार कर सकते हैं। सखियों घर के बने मसाले शुद्ध, ताजा एवं खुशबूदार होते हैं, जो कि मिलावट से भी मुक्त होते हैं। इन मसालों को एयर टाइट कंटेनर में रखकर साल भर प्रयोग में ला सकते हैं। सखियों इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो रहा है। आप स्वस्थ रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, इसी शुभकामना के साथ अपनी सखी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजश्री शर्मा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहाँ हम रोज ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो न केवल हमारा मनोरंजन करते हैं बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ छोटे छोटे विचार हमारी सोच को इतना बदल देते हैं कि जीवन पहले जैसा नहीं रहता।

दोस्तों, मित्रता केवल साथ बैठने, हंसने, मुस्कुराने या समय बिताने का नाम नहीं। सच्ची मित्रता वो है जो हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाए, जो हमें पहले से बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। हमारे जीवन में कई लोग आते हैं। कुछ लोग हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं तो कुछ हमारी परेशानियों में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मित्र वही है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करे, जो सफलताओं में ताली बजाए और असफलताओं में हमारा हौसला बढ़ाए। कहा भी तो गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि हमारे मित्र मेहनती हैं, तो मेहनत हमें भी आकर्षित करने लगती है। यदि वे समय का सम्मान करते हैं तो हम भी अनुशासन सीखते हैं। यदि वे सकारात्मक सोच रखते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद दिखाई देने लगती है। लेकिन मित्रता का अर्थ केवल अच्छी बातें सुनना नहीं। श्रेष्ठ मित्र वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी गलतियों की ओर भी ध्यान दे, जो हमें गलत रास्ते पर जाते देखकर चुप न रहे, जो हमारी हर बात पर हाँ न कहे और सही और गलत समझाने का साहस रखे। विशेषकर छात्र जीवन में मित्रों का प्रभाव गहरा होता है। कई बार एक मित्र हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, लक्ष्य निर्धारित करना सिखाता है और हार न मानने की सीख देता है। वहीं गलत संगति व्यक्ति को उसके सपनों से दूर कर सकती है। इसलिए मित्र चुनते समय ये अवश्य देखना चाहिए कि उसकी संगत हमने किस दिशा में ले जा रही है। दोस्तों, जीवन में धन, पद और प्रसिद्धि दोबारा मिल सकती है, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जिसने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया हो, आपको टूटने से बचाया हो, आपको आपकी क्षमता का एहसास कराया हो, तो उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। और यदि आप किसी के लिए किसी को प्रेरित कर सके तो इससे बड़ी उपलब्धि शायद ही कोई और होगी, क्योंकि अंततः मित्रता का वास्तविक अर्थ यही होता है कि हम एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बने और साथ मिलकर आगे बढ़े। दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आज है शनिवार और आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर यह नहीं बताती कि हम हार गए हैं, बल्कि ये सिखाती है कि उठना कैसे है। और ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है ईश्वर

गुर्जर की, जिन्होंने असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक साधारण परिवार से आने वाले ईश्वरलाल गुर्जर का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब वे 10वीं कक्षा में असफल हो गए थे। उस उम्र में जब बच्चे अपने सपनों को आकार दे रहे होते हैं, उस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक व्यक्ति का विश्वास हमें पूरी जिंदगी बदल देता है। ईश्वर गुर्जर के जीवन में वे विश्वास उनके पिता का था। परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, खुद को संभाला और एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक साधारण विद्यार्थी से लेकर सरकारी शिक्षक बनने तक का सफर तय किया। लेकिन उनके सपनों की उड़ान इससे कहीं बड़ी थी। उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। तीसरा प्रयास फिर निराशा हाथ लगी। कई लोग इतनी असफलताओं के बाद अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत बनाया। उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई। उन्होंने UPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त की और फिर लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी ये बताती है कि असफलता मंजिल तक नहीं बल्कि सफलता की तैयारी की होती है। ईश्वर गुर्जर का संघर्ष उन सभी युवाओं के लिए संदेश है जो किसी परीक्षा में असफल होने के बाद खुद को कमजोर समझने लगते हैं। अंक आपकी क्षमता तय नहीं करते बल्कि आपका धैर्य और निरंतर प्रयास आपकी असली पहचान बनाते हैं। यदि 1-10वीं में असफल होने के बाद छात्र अपने हौसले और मेहनत के दम पर देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंच सकता है, तो ये विश्वास हर उस व्यक्ति के भीतर भी होना चाहिए जो आज किसी संघर्ष से गुजर रहा है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर भी दोबारा उठने का साहस रखते हैं और अपनी सपनों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन जब यही बदलाव तकनीक के माध्यम से आम जनजीवन को आसान बना दे तो ये डिजिटल क्रांति कहा जाता है।

परिवर्तन की, जिसने भारत को नई पहचान देने का प्रयास किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। एक ऐसा समय था जब सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बैंक से जुड़े छोटे छोटे कार्यों में पूरा दिन निकल जाता था और कई सेवाएं केवल बड़े शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन आज तकनीक ने दूरियों को कम किया है और सुविधाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया है। डिजिटल भुगतान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज एक छोटा दुकानदार भी मोबाइल के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहा है। सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े व्यापारी प्रतिष्ठानों तक UPI आधारित लेन देन ने आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। नकदी पर निर्भरता कम हुई है और लेन देन अधिक सुविधाजनक बना है। इसी के साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब कई प्रमाण पत्र, आवेदन प्रक्रियाएं और विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारियां डिजिटल माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इससे समय की बचत हुई है और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल तकनीक ने नई संभावनाएं खोली है। ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल अध्ययन सामग्री और विभिन्न शैक्षणिक प्लेटफॉर्म ने विद्यार्थियों के लिए सीखने के नए अवसर प्रदान किए हैं। दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए भी ज्ञान तक पहुँच पहले की तुलना में बहुत अधिक सरल हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी तकनीक का उपयोग बढ़ा है। डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन परामर्श और स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं ने लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने का प्रयास किया है। हालांकि डिजिटल क्रांति के साथ चुनौतियां भी सामने आई है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। तकनीक तभी सार्थक है जब उसका उपयोग सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। डिजिटल परिवर्तन केवल मोबाइल ऐप या इंटरनेट तक सीमित नहीं, बल्कि ये सोच में बदलाव का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी सुनने वाले सभी भाई बहनों को गरिमा बहन की
1: और प्रियंका बहन की
0: घनी घनी
1: राम राम।
0: तो किसान भाइयों, आज की चौपाल में हम करेंगे चर्चा सबसे पहले मक्का उत्पादन की उन्नत उत्पादन विधि के ऊपर, और उसके बाद आपको जानकारी देंगे, जी हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार के 12 वर्षों पर क्या रही उपलब्धियां और क्या रहे बदलाव, और इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे एक भेंट वार्ता खरीफ की प्रमुख फसलों की उन्नत खेती, जिसके वार्ताकार रहेंगे हंसाराम जी, कृषि वैज्ञानिक शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा से। और उसके बाद हम सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा लोकगीत, जी हाँ लोकगीत के बाद होगी फिर से जानकारी बीजोपचार के बारे में। तो प्रियंका बहन, शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, सरकार के 12 वर्षों की और उनकी उपलब्धियां और बदलाव की। तो केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई 2026 में केंद्र में अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस कार्यकाल ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में कई ऐतिहासिक

0: और निर्णायक बदलाव किए हैं। सरकार के 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं और विश्वास, विकास और जन कल्याण के इन 12 वर्षों का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आकांक्षी भारत का निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर विस्तार रहा है। राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार द्वारा युवाओं, महिलाओं और किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
1: बिल्कुल, अब बात करते हैं सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में। कश्मीर से अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावीकरण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा का विकास शामिल है। वहीं कल्याणकारी योजनाओं की हम बात करें तो उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
0: यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान और तकनीकी सेवाओं की डिजिटल क्रांति का गांवों तक विस्तार हुआ है, जिससे प्रशासन अधिक पारदर्शी और सुलभ बना है। वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस वे का निर्माण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अवसंरचना और सुरक्षा तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों को लागू किया गया है।
1: बात करेंगे अब आवास क्रांति की। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों का निर्माण और करोड़ों घरों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और नल से जल यानी कि जल जीवन मिशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया गया। वित्तीय समावेशन की अगर हम बात करें तो जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। डिजिटल इंडिया की बात करें तो देश में डिजिटल लेन देन, पारदर्शी प्रशासन और तकनीकी क्रांति को बढ़ावा दिया गया। और वहीं स्वास्थ्य और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और बीमा योजनाएं प्रदान कराई गई।
0: गरिमा बहन, सरकार जो है हमारी बहुत सारी अथक प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप ही आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक विश्व स्तर पर नई पहचान हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगी। कृषि क्षेत्र की यदि हम बात करें तो एमएसपी पर खरीद की कहानी किसानों की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। 2004 से 2014 के बीच एमएसपी पर लगभग 7000 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। 2014 से 2026 के बीच यह बढ़कर 12,292 लाख मैट्रिक टन हो गई है, जिससे किसानों को अधिक आय सुरक्षा मिली है।
1: तो क्या आप जानते हैं कि विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी इस वित्तीय सहायता का अधिकतम उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि से जुड़े अन्य उत्पादक कार्यों के लिए कर रहे हैं। बाजारों तक आसान पहुंच से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आज लगभग 2 करोड़ किसान ई नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिसने बिचौलियों पर निर्भरता को खत्म कर बाजार पहुंच को सुगम बनाया है। वहीं भारत की कृषि की अगर हम बात करें तो भारत की कृषि यात्रा तकनीक से भी जुड़ी हुई है। करीब 26 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता समझने और बेहतर फसल प्रबंधन में मदद कर चुके हैं।
0: किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन 8000 किसान मित्र के माध्यम से अपनी कृषि संबंधी जानकारी और सहायता प्राप्त कर रहे हैं? ये तकनीक को किसानों की जरूरत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पहल के तहत लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार हुआ है, जिससे पानी का अधिक कुशल उपयोग संभव हुआ है। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। आज किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिट्टी परीक्षण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वैज्ञानिक सलाह जैसी सुविधाएं अभूतपूर्व स्तर पर उपलब्ध हुई हैं।
1: और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से भारत में लगभग 3000 जलवायु अनुकूल फसल किस्में विकसित की गई, जो कि किसानों को बदलते मौसम के अनुरूप खेती करने में मदद कर रही हैं। कृषि अब तेजी से नवाचार आधारित बन रही है। 12000 से अधिक कृषि और संबद्ध स्टार्टअप उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य संवर्धन और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो विकसित भारत की यात्रा केवल शहरों और कारखानों में नहीं लिखी जाएगी, ये

0: खेतों खलिहानों मत्स्य क्षेत्रों और गांव में भी आकर लेगी आकार लेगी, जहां सशक्त किसान देश की प्रगति को एक नई गति दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बात हुई प्रियंका बहन की 12 सालों में, पिछले 12 सालों में क्या रही हमारी भारत सरकार की उपलब्धियां और क्या रहे बदलाव। और अब हम बात कर लेते हैं, देखिए मक्का उत्पादन की उन्नत उत्पादन विधि क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को ज्यादा जानकारी देते हैं। तो मक्का की अगर हम बात करें तो देखिए मक्का खेती के उन्नत तकनीक को किसान द्वारा पूर्ण रूप से अपनाने पर किसान व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ राज्य की मक्का उत्पादकता को राष्ट्रीय उत्पादकता को के समतुल्य ला सकता है। वर्तमान में गुणवत्ता मक्का, मीठी मक्का, शिशु मक्का और फूली की मक्का की खेती को काफी पहचान मिल चुकी है। किसान इसकी खेती कर अधिक मुनाफा और पौष्टिक हरा चारा प्राप्त कर सकता है।
1: मक्का की किस्मों और उनके चयन की यदि हम बात करें तो मक्का की अतिशीघ्र पकने वाली किस्में जो 75 से 80 दिनों में शीघ्र पक के तैयार हो जाती हैं और जो 80 से 85 दिनों में और मध्यम समय में पकने वाली जो किस्में हैं वो 85 से 95 दिनों में एवं देर से पकने वाली किस्में 95 से अधिक दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। राजस्थान में वर्षा पोषित क्षेत्रों में शीघ्र से मध्यम समय में पकने वाली किस्मों को प्राथमिकता से बोना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो वहां देर से पकने वाली किस्मों की बुवाई करनी चाहिए।
0: अब इसके बाद अगर हम बात करें संकर और संकुल किस्में और उनके उपयोग की, तो मक्का प्रजनकों द्वारा एक बार बनाए संकर बीजों को बोने के बाद इनसे जो उत्पादन मिलता है उसको अगले वर्ष संकर मक्का के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगले साल संकर मक्का के उत्पाद को बीज के रूप में इस्तेमाल करने से उत्पादकता काफी घट जाती है, इसलिए संकर मक्का का जो बीज होता है वो हर साल नया ही लाना जरूरी होता है। बात करें अगर हम भूमि के चयन की और जांच की तो इसके बारे में तो जानकारी लीजिए।
1: मक्का की प्रारंभिक अवस्था में खेत में पानी भरा रहने से इसकी बढ़वार नहीं होती, इसीलिए उचित जल निकास वाला खेत जिसमें मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त रहता है। मोथा एवं धूप जैसे खरपतवारों के नियंत्रण एवं कीटों बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और फिर वर्षा आने पर हैरो और कल्टीवेटर पाटा चलाकर खेत को समतल करके मक्का की बुवाई करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बीज दर और पौध ज्यामिति की बात करें तो किसान मक्का के नियत बीज दर प्रयोग करें और अतिरिक्त पौधों को 15 दिनों तक निकाल लें। कई तरह की मक्का में अच्छे उत्पादन के लिए नियत बीज और पौध ज्यामिति का प्रयोग करें। वहीं अगर हम बुआई के समय की बात करें तो मक्का की बुआई 15 जून के बाद बारिश आते ही कर देनी चाहिए। प्रथम वर्षा 40 से 50 मिलीमीटर से कम हो तो बुआई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जून माह की प्रखर गर्मी में तपी भूमि में बनी वाष्प से बीज खराब हो जाते हैं और उनका अंकुरण जो है वो नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई मक्का उत्पादन की और अब आइए आपको सुना देते हैं कुछ संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर

0: सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे ये संदेश, और अब हमारे किसान भाइयों को सुना देते हैं एक भेंट वार्ता। खरीफ की प्रमुख फसलों की उन्नत खेती पर वार्ताकार हैं हंसाराम माली जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा से हैं। आइए सुने प्रियंका भाई।
4: किसान भाइयों नमस्कार, मैं आज आपको खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमारे अलवर जिले के अंदर खरीफ के अंदर मुख्य रूप से बाजरा है, तिल है, मक्का है, ज्वार है, ग्वार है, इत्यादि फसलें खरीफ के सीजन में ली जाती हैं। इसमें सबसे मुख्य फसल बाजरे की फसल है, जिसकी खेती के लिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले खेत की तैयारी करनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए किसान भाई मानसून की वर्षा से पूर्व खेत में जो गोबर की खाद है 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें और जुताई कर दें। जैसे ही जो मानसून की बरसात आती है उसके बाद में किसान भाई खेत की जुताई करके और बाजरे की उन्नत किस्मों को किसान भाई या तो उराई कर सकते हैं, और उराई करते समय किसान भाई खेत कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें, और इसके लिए जो किसान भाई हैं वो अच्छी किस्में लें जिसमें HHV 299 वेरायटी है, बहुत अच्छी वेरायटी है। इसके अलावा RHV 234, RHV 233, RHV 171, RHV 167 इत्यादि किस्मों का किसान भाई उपयोग में लेकर अच्छी से अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों को बीजों को बोते समय बीजोपचार करना भी बहुत जरूरी है। बाजरे का बीजोपचार करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले बीज को जो कार्बेंडेजिम प्लस मैंगो जैब 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित करें। इसके बाद में किसान भाई दीमक एवं सफेद लट के लिए किसान भाई इमिडा क्लोप्रिड 600 FS का 2.5 ml प्रति kg बीज के हिसाब से किसान भाई बीज उपचार करके, और लास्ट में जैविक खाद एजोस्पायरिलम से बीज उपचार करके किसान भाई बोएंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छा से अच्छा लाभ होगा और साथ के साथ में किसान भाइयों की लागत में भी कमी आएगी। इसके बाद में खरपतवार से निजात पाने के लिए किसान भाई हैं जो बुवाई के 24 घंटे के अंदर अंदर किसान भाई चाहें तो खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई एट्राजिन 0.5 किलोग्राम प्रति सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं, जिससे किसान भाई के खेत में बाजरे में कोई भी खरपतवार का प्रकोप नहीं होगा। और अगर किसान भाई उस समय पर नहीं कर पाता है तो किसान 25 से 30 दिन का जब बाजरा हो जाए उस समय पर किसान भाई इसी एट्राजिन का 0.5 kg सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके किसान भाई इसको बाजरे में खरपतवारों का निदान कर सकते हैं। अब एक और नया खरपतवार नाशी बाजरे के अंदर आ गया है, जिसमें किसान भाई टेम्बोट्रियोन जो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके और उसको भी 20 से 25 दिन पर स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों को जो चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे और इससे फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ में किसान भाई बाजरे के अंदर जो उर्वरक हैं उर्वरक में भी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों को 75 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर, इसके साथ में 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को खेत में देना चाहिए, जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा बिजाई करते समय और आधी जो शेष आधी मात्रा है उसको 20 से 25 दिन का जब बाजरा हो जाए उस टाइम पे जो नमी रहे तो किसान भाइयों को खेत में देनी चाहिए। इसके साथ साथ में किसान भाइयों को कुछ समस्याएं आती हैं, जिसमें एक कातरा जो है कीड़ा लगता है, उस कीड़े के लिए भी किसान भाइयों को अपनी मेड़ को साफ रखना चाहिए, जिससे और जब मौसम जैसे ही साफ हो तो उस टाइम पे जो कीड़े मारने वाली जैसे प्रोपेनोफोस का मेड़ पे और जो चारों तरफ स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे किसान भाइयों के कातरा और जो कट्टा या कहें हम ग्रास ऊपर है उसकी समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके साथ साथ में किसान भाई और भी जो खरीफ फसलें हैं उनको भी बो सकते हैं, जैसे जिसमें ग्वार है। ग्वार के लिए जो बुवाई का उचित समय है, जो मानसून की बरसात आते ही किसान भाई ग्वार की उन्नत किस्मों का चयन करके बिजाई कर सकते हैं, जिसमें ग्वार की RGC 1033, RGC 1066, करण ग्वार 1, RGR 12-1 इत्यादि किस्मों का उपयोग करके किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपज ले सकते हैं। और ग्वार की फसल जो है वायुमंडलीय नत्रजन को भी स्थिर करती है और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है, तो साथ के साथ में ये मिट्टी की भौतिक संरचना है और जो उर्वरा शक्ति है उसको भी बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है ग्वार की फसल।

इसके साथ साथ में किसान भाई तिल का भी खरीफ फसल के रूप में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक तिलहनी फसल है। इसके लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें RT 372 किस्म है, RT 351 है, RT 352 है। इन किस्मों को किसान भाई तिल खरीफ की फसल के रूप में बो सकते हैं, और इसकी खरीफ की बुवाई के समय अब जो बरसात आती है उस टाइम पे किसान भाई बिजाई करें इसकी, और इससे किसान भाइयों को लगभग 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक तिल की फसल की उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ साथ में किसान भाई हैं वो मक्का की भी फसल खरीफ के रूप में ले सकते हैं। इस फसल के लिए किसान भाइयों को वही जिस तरीके से बाजरे के लिए खेत तैयार किया जाता है उसी तरीके से खेत तैयार करके, और इसमें भी किसान भाई हैं वो मक्का की उन्नत किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें HQPM 1, HQPM 5, HQPM 2 और माही धवल, माही कंचन इत्यादि किस्मों का किसान भाई उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें भी जो मक्के के अंदर भी खरपतवार प्रबंधन के लिए किसान भाई हैं वो एट्राजेन 0.5 kg सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के 48 घंटे के भीतर भीतर प्री इमरजेंस के रूप में, या हम कहें फसल उगने से पहले स्प्रे कर देंगे तो किसान भाइयों को जो खरपतवारों से है वो मक्का में निजात मिल सकती है। इसके साथ साथ में किसान भाई जो मक्का में जो उर्वरक हैं उर्वरकों का उपयोग करने के लिए भी किसान भाई हैं वो 80 किलो नाइट्रोजन नत्रजन और 40 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई खेत में डालेंगे तो उनको अधिक से अधिक उपज मिलेगी। इसके साथ में अगर किसान भाई बिजाई के समय पर अगर खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं कर सकता है तो 20 से 25 दिन की जब मक्का की फसल हो जाए तो एट्राजिन का 0.5 kg सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे अगर करेंगे 25 दिन पर तो किसान भाइयों में चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप नहीं होगा और फसल है वो बहुत अच्छी होगी और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को उपज मिलेगी। इसके बाद में किसान भाई जो मक्के में सिट्टा आते समय पर कुछ गिनार लगती है मक्के के सिट्टे में, उसके लिए भी किसान भाई है वो प्रोपेनाफर्स का स्प्रे कर सकते हैं मक्के में, जिससे जिसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है, और जिससे किसान भाइयों को जो मक्के में जो स्टेम बोरर लगता है या गिनार लगती है उसे किसान भाई निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ में किसान भाई खरीफ फसल के रूप में ज्वार का भी उपयोग कर सकते हैं। ज्वार के लिए किसान भाई CSV 30, CSV 25, CSV 18 वेराइटियों का उपयोग करके भी किसान भाई ज्वार की खेती भी आसानी से खरीफ सीजन के अंदर किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अभी एक नई फसल और हमारे अलवर जिले में धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली की जो फसल है उसको किसान भाई अब लेना शुरू कर दें। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये खेत में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, और इसमें एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है कि जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और साथ के साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, और एक हमारे जो आसानी से बाजार में बेच के अधिक से अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है, और ये कपास की तुलना में ज्यादा हमारे एरिया में जो मुनाफा है वो देगी ये फसल। तो इसके लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा अच्छी जो वैज्ञानिक तरीके से अगर मूंगफली करते हैं किसान भाई और इसकी अच्छी किस्मों का उपयोग करते हैं, तो अच्छी किस्मों की अगर हम बात करें तो इसमें जो वेरायटी है वो है RG 578 वेरायटी, हमारे यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। GG 20 जो वेरायटी है वो भी बहुत अच्छी है हमारे जिले के लिए। इसके अलावा GG 25, GG 2 इत्यादि वेराइटियाँ हैं वो हमारे किसान भाई हैं मूंगफली की ले सकते हैं, और जिसका जो बुवाई का उचित समय है वो जून के प्रथम सप्ताह से लेके और 15 जून के बीच में किसान भाई इसकी बुवाई कर दें, जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इसके लिए जो किसान भाई हैं इनमें खरपतवार का प्रबंधन करने के लिए किसान भाई जो बुवाई के 48 घंटे के बीच में पेंडीमिथिलीन 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों के मूंगफली में कोई खरपतवार नहीं होगा। इसके साथ साथ में अगर किसान भाई के फिर भी खरपतवार रह जाता है तो 20 से 25 दिन पर इमीजाथाइपर खरपतवार नाशी है उसका 0.50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे अगर करेंगे किसान भाई, और जो कि 20-25 दिन की जब मूंगफली उस टाइम पे स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों को खरपतवार से निजात मिल जाएगा। इसके साथ साथ में अगर किसान भाई के कोई सफेद लट की समस्या आती है मूंगफली में तो उसके लिए किसान भाई फिप्रोनिल 0.3 GR 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बुरक दें, जिससे कि किसान भाइयों के जो है सफेद लट की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ में किसान भाइयों को अगर बरसात नहीं होती है और खासकर मूंगफली के अंदर जो मृदा में नमी बनाए रखना, फूल आते समय मिट्टी में नमी होना जरूरी है, उसके लिए अगर बरसात नहीं होती है तो सिंचाई की व्यवस्था भी किसान के भाई होनी चाहिए, जिसमें एक तो फली बनते समय
जो पोड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, और एक जो मूंगफली में फूल आता है उस समय बहुत जरूरी होता है कि नमी खेत में बनाई रखें, जिससे जो मूंगफली की जो सुई है वो जमीन में आसानी से जा सके। और हमारे जो अलवर जिले की अगर बात करें तो अलवर जिले में लगभग

0: हमारे जो 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघा तक, या हम कहें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मूंगफली की उपज किसान भाई ले सकते हैं और इससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो आज मैंने आपको जो खरीफ फसलों की उन्नत खेती के बारे में संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों को जरूर अच्छा इससे फायदा मिलेगा और किसान भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकेंगे। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: तो किसान भाइयों, अभी सुनिए आपने ये भेंट वार्ता और निश्चित रूप से आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और आइए अब आपका करवा देते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ये चोखा सा लोकगीत।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे प्यारा सा लोकगीत चूड़ी चमके, और अब हमारे किसान भाइयों को देखिए अंत में दे देते हैं जानकारी बीजोपचार पर, कम खर्च में रोगों से किस तरीके से हमारे किसान भाई छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रियंका बहन, दो जानकारी हमारे किसान भाइयों को।
1: बिल्कुल किसान भाइयों, तो बीजोपचार करते समय हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि FIR क्रम का हमें ध्यान रखना है। बीज को सर्वप्रथम फफूंद नाशक, फिर कीटनाशी और अंत में संवर्ध कल्चर से उपचारित करना है। किसान यदि इसे

0: खरीदना चाहें तो विभाग द्वारा सीड ड्रेसिंग ड्रम 20 किलोग्राम के लिए कीमत का 50% या अधिकतम ₹1,750 तथा 40 किलोग्राम के लिए कीमत का 50% या अधिकतम ₹2,000 अनुदान सहायता देय भी है। फसलों में लगने वाली 2/3 बीमारियां भूमि व बीज जनित होती हैं। भूमि व बीज जनित रोगों की सघनता एकल खेती और सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। ग्रसित क्षेत्रों में भूमि व बीज जनित रोगों का प्रभावी नियंत्रण करने के लिए बीज उपचार एक प्रभावी माध्यम है, यानी कि बीज उपचार के द्वारा जो हमारे किसान भाई हैं वो रोगों से और जो उसमें कीट लगते हैं उनसे काफी अच्छे प्रभावी ढंग से छुटकारा पा सकते हैं। बीज उपचार कार्य यदि हमारी फसलों में नहीं किया जाता तो उससे 8-10% तक जो उत्पादन है वो कम होने की संभावना रहती है। फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने हेतु आवश्यक है कि फसलों में कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं हो अथवा प्रकोप होने की स्थिति में उनका समय पर नियंत्रण किया जाए। फसलों में वैज्ञानिक ढंग से बीज उपचार करने के लिए सीड ड्रेसिंग ड्रम का एक प्रभावी उपकरण है, जिससे बीज सही तरीके से उपचारित किए जा सकते हैं। एक एक सीड ड्रेसिंग ड्रम कृषि पर्यवेक्षकों की देखरेख में निशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं।
1: क्या बात है। तो देखिए कि किस तरीके से कम खर्च में हमारे किसान भाई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, ये भी उन्होंने जान लिया। तो आज हमने काफी सारी जो है वार्ता हमारी किसान भाइयों को सुनाई, चर्चा की, काफी अहम चर्चा की, काफी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों देखिए, आज हमारी चौपाल में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात इसी तरह की विशेष चर्चाओं के साथ में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवान,
0: जय किसान।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए।

0: जत सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जाँच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइड्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मुहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ, नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहां प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।

0: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था, जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे, इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
2: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
1: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र की NDA सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनकी उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार।

0: इंडियन मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास रे दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगर री सोचूं देश बरकत रा गेला माथे चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है जो महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौर सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वे ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वे दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमानी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32 हादसा रो शिकार फेंक्यो। इन कारण 5 जवान शहीद फेंक्या। वायुसेना कन्यू करीचिया सोशल मीडिया पोस्ट रे मुजब हादसा रे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वे की। हादसा री ठौड़ सर्वाती जांच सागे जरूरी कार्रवाई करी जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रे बारे माए ग्लोबल फोरम और फार्मर साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी री जी है। भारत री सदारत माए भी आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सलेंस सेंटर बनावन रोई फैसलो कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माए बदलाव रीठा करण सारू बनाई चिया आयोग ने सरहदी जिला माए आबादी रा बदलाव री जानकारी करण बाबत कहो है। वह आज इंबारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगरा और औद्योगिक शहरां रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन सारुई कहो। ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी माए बदलाव न रोकन रा उपाय सुझावन सारू आला दर्जा री समिति बनाई है। देश माए लाडला 10 साल माए जन्म री बगत हर 1000 लड़का ने मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 बधर 929 वेगी है। स्कूला माए माध्यमिक स्तर माथे टाबनियां री तादाद 75 बधर 80% रे करीब वेगी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर माए टाबनियां ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक

समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है। वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ कोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला मत

0: आज जयपुर में खबर नवी सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र में एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता था कांशी शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ कोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है।
1: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। पहली अट्ठे प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही जो अब बेधर 2,00,000 रुपया बत्ती वे की है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आ गई प्रदर्शनिया रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगों ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए जनता की समस्याओं मौके ही निपटार वन सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वन ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे जिस अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पालीरा गुढ़ा एंदला माए लगाई चया ग्रामीण सेवा शिविर माए टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार का ने ऑनलाइन तरीका दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रे जरिए पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवार न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तहत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवार री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताईचियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन री शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए कई ठोड़ा बिरखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ माए बरसियो। श्री गंगानगर चूरू और सीकर माए उड़ा पड़िया जिनू तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात सरूफियो बारिश रो दौर रुक रुक कर आज समारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात भी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। तुजिकानी जैसलमेर माए जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यो वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने साखा री कटाई और वाने भिड़ीकरण का काम माए सावचेती राखण सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशों में भांत भांत रा कार्यक्रम रखा जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र में लोगों ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला में प्रदेश में आई कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इस बीच अहमदाबाद में भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सोना रा 2 तमगा जीतने वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
3: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं को आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में

0: करें।
1: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माय फौज और सिविल सोसाइटी बीचे मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ली राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरू ओ दौरो खास मान्यो चार्यो है। इरा पहला दौर माय काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माय वे काल स्लोवाकिया सारू रवाना भेजा वेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माय 16-17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माय शामिल भेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माय विवाटेक सम्मेलन माय शिरकत करेला। आखिर माय खास समाचार एक फेरू सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड माय पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माय विकास रे दिशा माय खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री NDA सरकार री नियमा माय साफ गोई और नीतियां माय आगे री सोच देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, जिसका विषय होगा अष्टलक्ष्मी। 7:45 पर फिल्म संगीत, 8:15 पर लोक संगीत, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9:00 समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे, 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और 11:05 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी।

कल सुबह हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। 6:05 पर वक्त रहेगा कार्यक्रम वंदन वार का। 6:35 पर रामचरित मानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता। सुबह 7 बजे वक्त रहेगा कार्यक्रम नमस्कार अलवर का। 7:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। 8 बजे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 8:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे स्वास्थ्य पत्रिका। कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे वक्त रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से। 1:05 से आप सुनेंगे विविध

भारतीय सेवा की कार्यक्रम दोपहर 2 बजे समाचार अंग्रेजी में 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे और 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

कल हमारे संध्या के मुख्य मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी, जिसमें कल चर्चा का विषय होगा हर दिन कुछ नया सीखें। साथ ही आओ जाने में आप जानेंगे विश्व रक्तदान दिवस के बारे में। 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी, जिसमें टेक ज्ञान के अंतर्गत आप सुनेंगे एसी में टन का क्या मतलब है, साथ ही जानकारी विश्व रक्तदाता दिवस। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसमें कल चर्चा का विषय होगा बाजरे की वैज्ञानिक खेती व रोग प्रबंधन, साथ ही जानकारी दी जाएगी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन एवं तुड़ाई के समय सावधानी। 6:28 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे। कल संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, जिसका विषय होगा सशक्त भारत। 7:45 पर फिल्म संगीत, 8:15 पर लोक संगीत, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे, 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से, रात्रि 11 बजे वक्त रहेगा हिंदी में समाचार का, जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, और 11:05 पर हमारी कल की सभा समाप्त होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। सुनिए देश गाना।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, जिसका विषय है अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन। उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए,

0: भी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया।
0: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उस पर दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए है तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया, 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण जो गंदा

0: पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी का मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी हैं। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियाँ तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक

0: प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी। वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे, कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है। उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है। जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा। मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे

0: बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज़्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दुमनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो भी खो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊँगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, सब काम एक ही आदमी

0: इतनी ताकत के साथ कर रहा है और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो? उसका कोई वजह नहीं उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया? ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वो ऐसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला

0: मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा,
1: सकते।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से एक

0: चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे। आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल FM बैंड 103.1 MHz पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने और गीत रचना थी अनजान की।

जाबाज। इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना किशोर कुमार और सपना के स्वर में। तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने और गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म हस्ते जख्म से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

देवर की रचना को मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना। फिल्म थी पूरब और पश्चिम। संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म मेरा साया से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

मुकेश के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी अनोखी रात, संगीत से सवारा था रोशन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इला अरुण और साथियों के स्वर में गाए हुए लोकगीत।

लोक संगीत का आनंद अभी आप ले रहे हैं अलवर सरिस्का चैनल से। इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं इला अरुण के स्वर में गाए हुए लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझ जैसी साधारण आवाज़ को पसंद करके मुझे प्रोत्साहित किया। अब मेरा फ़र्ज बनता है कि जो कुछ भी गाऊँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। फोक के रंग को बरकरार रखते हुए इस बार मैंने ऐसी ही कोशिश की है, पर कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका ट्रांसलेशन संभव नहीं, उस शब्द का मज़ा ही चला जाता है। ऐसा ही एक गाना है, लारा छोड़ दो। लारा छोड़ दो बहुत खूबसूरत शब्द है, पर मैंने इसका अर्थ आपके लिए किया है, पीछा छोड़ दो। मेरी चूनर में दारूड़ी का यानी शराब का, मदिरा का एक छोटा सा दाग लग गया है, और उसकी खुशबू से वो जो सामने की हवेली में रहता है, जिसके घुंघराले बाल हैं, जो बहुत खूबसूरत है, जिसने गुलाबी पगड़ी बांध रखी, वो मेरे उसने अपना होश खो दिया है और वो मेरे लारे लग गया है। हुजूर, मेरा लारा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मेरा लारा छोड़ दो।

इला अरुण के स्वर में ये लोकगीत अभी आपने सुना और इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार, प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के

0: अवकाशों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर

0: पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा इस फिल्म से। ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ।

आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ, संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाळा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नज़र पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है। सनन, सनन, सनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज़ ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: हस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल
1: तो देखिए उसका अंतरा है।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूँ। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

तुमसे मिले तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की ज़रूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज़ का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहाँ जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताब जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। इस समय हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के ठीक 11:05 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह की प्रसारण सभा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।